0: बिरामी जाँच हुने समय प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। थप जानकारीका लागि नेशनल बाथरोग सेन्टर तुलसीपुर 5 क लाइन बीपी चोक दान फोन नम्बर 082-520-103 र मोबाइल नम्बर 98-577-80-103।
1: नेशनल बाथरोग सेन्टर, स्वास्थ्य तपाईँको सेवा हाम्रो।